0: तिनाथ विकास बैंक को आड़ेमा पहिला जनता बैंक रहेको घर सम्पर्क नम्बर 9845000271 र 9805677272।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सेंग एफएम 95 मेगाहर्ज

छ्यादलो रेडियो मर्सिङदी 95 मेगाहर्ज तेह्र इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सिङदी .org नाना 8 बजे खबर तमुकी मर्सिङदी फेतिरी गा खुसी माया तमुसोला तेबा म ऐसोदी क्लब फेते।

मर्सिङदी नासापालिका तीन खुदेरी प्रहरी मैना नागरिक सुनवाई ट्राफिक व्यवस्थापन डेबेले कडाई लभारी नासाथेमैला सुझाव अल्बिनोजम अपाङ्गता तथा मिमैना अधिकार बारेरी बेसी सहरारी अभिमुखीकरण राष्ट्रिय युवा संघ लमजुङ्गजी को दान लब कार्यक्रम आयोजन लैमो कार्यक्रमले एक्काइसजनाजी को दान लैमो दे यस यी परीक्षा तयारी लबै लागि बेसर 11 रुपैयाँ माध्यमिक विद्यालय अभ्यास दिएर 10 सेट किताब चोइमो

0: छ्यान भन्दा तीन गुणा बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला
1: तीन गुणा लाना टुला
0: उलास मुसम अर्को तिल दमाइसे
2: हेलो मर्सेंग दे एफएम 95 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सिडीज एफएम 95 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

बोलो श्री शिवशंकर भोलेनाथ को, बोलो श्री माता पार्वती को, हरे है मेरो भगवान मनुष्य को जिंदगानी।